ti purani tanu, vidite sakale san san. Kaušik, suno, vanda ihe baan, kutila kala vasa nija kula gala, tuma hata kahu jo čaha ubara, kahita taap bal rošu hamara. Sur samad karani karahi, kahina janavahi aap, nityaman rana paayani, kayaan karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल हि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होइ जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उकरे पटल पर

0: बच्चू हमारी को आज्ञा ले लो।
1: तुम्हारी को आज्ञा लेनी पड़ेगी।
2: हमारी
0: और का हमारी आज्ञा बिना तो यहाँ की माँ बाप ना रह सको।
2: हाँ तो कभी तुम्हें
1: अरे सचिव वो पर